जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच आ रहे देख देख फते बिट की पैज पंत की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी सतनाम सिखानु सिखी दान खेस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहेब जी के दर्शन स्नान चुंकिया जुंदे बुंगे जुग जुग ताल तर मकाजे खर खालस जी बोलो जी सतनाम सिखा दा मानी वा मातु जी मत भत धर रखा आप वाही गुरु गुरु हे खाल पुरख अपने पंतरे सदा सहाई दा तर जियो श्री नंकाना साहब दे होर गुरुद्वारे अगर धन दामा दे जिना तू पंत नु विचोरिया गया है खुले दर्शन दिलाए सेव संभाव दादां खालस जी ने बख्शो हे ने माने रे माने धाने रे धाने ओते ने ओत सच्चे पिता वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु इन योर ग्रेस योर काइंडनेस योर लव योर परफेक्शन वी स्टैंड दिस मॉर्निंग विद आवर हेड्स बाउड बिफोर यू इन हंबल ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द मेनी मेनी ब्लेसिंग्स दैट यू एवर शावर अपॉन अस दिस डे एंड एवरी डे वी थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ द साद संगत वी थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ योर होली नाम दैट ब्रिंग्स अस टुगेदर and nourishes us and exalts our souls and leads us unto infinity, a home to you by your grace, by your great kindness. We pray this morning for all those gathered at your lotus feet, for all those that are listening, for all those far and wide, for every soul on this beloved planet that longs to be reunited with you and experience you and experience your Charikala. May this beautiful path of truth and righteousness ever prevail on the planet. May all be uplifted by your presence in us, always with us, always leading us onward. We thank you for the gift of the Siddhi Singh Sabha Bhai Sabha Harbhajan Singh Khalsa Yogi Ji, thy most humble servant, our beloved teacher and guide who showed us the way to you and gave us a pathway that exalts our souls and lets us experience excellence always in all aspects of our lives. May we serve this Dharma, may we serve these teachings, may we be blessed to carry them within us and deliver them to all by your grace. Waheguru. We pray for peace on this planet, peace in every country, every land, every space, every family, everywhere. Your peace, may it prevail on the planet and unite us all as your one vibration by your grace. We offer prayers on behalf of the Satsangat this morning. We're going to be chanting a call for Lisa Doge. Is that correct? Buddhist teacher from Waheguru, you know who this beautiful soul is. Please inhale to chant a call.

साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब किच है, जिस ते सो पावे सदा सिफत सलाहे, तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वस्या, वाचे शब्द गनेरे, कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जिन भुक्का सब गवाया, कर संत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाया, सदा कुर्बान कीता गुरवितो, जिस ते वडियाया, कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सभागे शब्द वाजे, कला जित घर तारिया, पंच दूत वास कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुर जिनको से नाम मार के लागे, कहे नानक ते सुखोआ तित घर अनहद वाजे, मुंडावने महला पांचवा ताल विच तिन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ताकर का पयो, जिसका सबस अदारो, जे को खावे जे को पूछे तिसका होए उदारो, ए वस तजी ने जाई नित नित रख और दारो, थम संसार चल लग थरिय सब नानक ब्रह्म पसारो, श्लोक महला पांचवा।